0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ পুৰ। এতিয়া ছয় বজাত হিন্দীত আৰু ছয় বাজি পাঁচ মিনিটৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে ৰবি কাপুৰ। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
3: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG re-examination, will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all system jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair, transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, Mr. Sonowal said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dhunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, will inaugurate and dedicate several key railway infrastructure projects aimed at enhancing passenger amenities and strengthening the rail network in Rajasthan today. He will flag off the Lalgarh Sabarmati Express from Bikaner Railway Station. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undaf scored twice. Earlier, Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And that is the end of this news bulletin.
0: Akakwani Guwahatir, Pragjyotishpur, Onusthan Porisiti.

0: অনুৰাধা পাৰলৰ কণ্ঠৰ ভজন্তী শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8 বজাত সমাচাৰ প্ৰভাত, 8:15 মৰ্ণিং নিউজ আৰু 8:30 বজাত নৰ্থ ইষ্ট নিউজ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ প্ৰভাত কে সাথ মই ফৰহত নাজ। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
6: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 111
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे साथ साझा की है बहुत ही रोचक जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और हमारे युवा साथी बहुत रुचि लेकर इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए, तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार

0: स्वरूप दी गई, वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी। ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें, इनका क्या रेलिवेंस है, इनकी क्या समसामयिकता है, ये हम समझे, और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी है, चोल साम्राज्य, हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझें। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितनी रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने 2 विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
0: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौटकर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
3: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं

0: हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
1: जी।
0: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे या जो है राजस्व से संबंधित होते थे या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
1: जी।
0: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है वो स्टैंप लगा हुआ है और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई है और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
1: जी।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे उन्होंने अनुदान दिया था, एक मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मोनेस्ट्री बनाई गई थी तो वहां पर एक गांव था अनाई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मोनेस्ट्री को दिया गया था और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मोनेस्ट्री थी उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो पहला पोर्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है जिसको अपना वो इष्ट देवता मानता है
1: जी।
0: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं
1: जी।
0: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनियोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की उसको यहाँ पे बयां किया गया है
1: जी।
0: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की उनको मेंशन किया गया है
1: जी।
0: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है तमिल में, जो अनुदान दिया गया है इस विहार को उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनाई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है
1: जी।
0: कि उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है और उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं
1: जी। तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें जी। बहुत ही रोचक ये जानकारी है और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
2: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती है बिटवीन द लाइंस
1: जी,
2: वो समाज के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं
1: जी।
2: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
1: जी
2: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है, तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
1: जी,
2: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं, इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो ये करीब 1000 साल का इनका शासन है। लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजयालु जो प्रथम शासक थे इनके
1: जी,
2: और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा। ऐसा बहुत कम है, मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 125 साल का था
1: जी।
2: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
1: जी,
2: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है। पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
1: जी,
2: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है, सबका साथ सबका विकास
1: जी,
2: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैट्रनेज दे रहे थे
1: जी,
2: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
1: जी।
2: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है। उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं, जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है। अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में। लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पर चोल वंश के काल में शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
1: जी।
2: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
1: जी,
2: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है जो उस समय के और हमारे समाज की विशेषता रही है कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
1: जी,
2: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था। राजा कोई दिक्कत आए तो वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
1: जी।
2: ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती है
1: जी। तो हमें पता चला कि सर्व धर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं ये भावना उस समय भी थी, और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है जी। ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
2: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत है तो जो इसपे हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा ये सुनवा दें
1: जी।

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है। नॉर्थ में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए हैं, उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था, एक्चुअली वो यूरोपियन सामंतवाद की तरह नहीं था, यहाँ पर जोर जबरदस्ती और हिंसा मुख्य माध्यम नहीं था समाज में व्यवस्था बनाने का। इसीलिए हम पाते हैं कि यूरोप वगैरह में, यहाँ तक कि चीन में कृषक विद्रोहों की बड़ी परंपरा थी
0: जी,
1: यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। एक बड़ी रोचक बात यह है कि बड़े विद्रोह कहीं नहीं हुए
0: जी,
1: हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए शायद जो आर्मी भी थी, जैसे चोल वंश की आर्मी करीब 100,000 स्टैंडिंग आर्मी थी और करीब 100,000 उनके लेवीज यानी कि वो जो नायक वहां के जो सामंत होते नायक बोलते थे उनसे मंगवा सकते थे
0: जी।
1: ये इसकी तुलना करें जो बाद की सेना है, जैसे मुगल सेना थी करीब 6,00,000-8,00,000 की सेना थी, उसका लैंड रेवेन्यू से ही खर्चा चलता था
0: जी,
1: तो लैंड रेवेन्यू उस समय कहीं ज्यादा था। जो चोल वंश में हम देखते हैं ज्यादातर 1/4 से 1/6 तक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितना लैंड रेवेन्यू जाएगा सरकार को। अक्सर होता है कि जितना केंद्र लेता है उतना ही करीब लोकल जमींदार वगैरह भी ले लेते हैं
0: जी,
1: तो उसको आप मान लीजिए बहुत से बहुत 40-50% किसान को देना पड़ता था, जबकि हिस्टोरियन नॉर्थ के बारे में बताते हैं 70-80% किसान से ले लिया जाता था रेवेन्यू। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी चोल वंश के समय में कि हिंसा कम करके ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में एक आइडियोलॉजी को, और इसी के साथ भक्ति आंदोलन भी आ गया था
0: जी।
1: अलवर और नयनार इस समय दक्षिण के अंदर बहुत सफल एक वैष्णव और शैव भक्ति आंदोलन मना रहे थे, तो उससे कोई बड़े विद्रोह का कहीं उदाहरण नहीं है
0: जी।
1: आपने महिलाओं के लिए पूछा था, महिलाओं में भी हम देखते हैं ये तो था कि सुपीरियर मेल को माना जाता है, रिचुअल स्टेटस उसका ज्यादा है, लेकिन पर्दा नहीं था। और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शंस में कि कई जगह महिला गांव की प्रधान होती थी, इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं
0: जी।
1: महिलाएं सेंट्स थी, वाद विवाद में भाग लेती थी
0: जी।
1: तो शिक्षा भी उनको इसका मतलब मिलती थी पूरी। और जो बाद में पर्दा वगैरह नॉर्थ में आ गया वो यहाँ नहीं था, ये बहुत अच्छी एक बात नजर आती है।
0: तो कुल मिलाकर समाज के जो सभी तबके हैं उनके कल्याण के लिए साम्राज्य में कार्य किया जाता था जी, समरसता ज्यादा थी। मनीषा जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे पास इस तरह के तथ्य प्राप्त होते हैं कि जो चोल साम्राज्य के पास अपने समय के सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और उस समय भी दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजनेस होता था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं।
2: चोल जो साम्राज्य था उसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी और उस नेवी के बलबूते पर हम देखते हैं कि जो राजराज चोल थे उन्होंने जो है काफी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। श्रीलंका, मालदीव, इन क्षेत्रों को वो अपने जो है तहत लेकर आए। और उसके बाद जो है राजेंद्र चोल जो है हम देखते हैं कि उन्होंने जो है शैलेंद्र जो शासक थे उन पर आक्रमण किया। इनफैक्ट जो है ये कहा जाता है कि इतनी अच्छी उनकी नेवी थी चोल शासकों की कि उन्होंने जो ये बंगाल की खाड़ी है उसको एक चोलों की झील के तौर पर उसको परिवर्तित कर दिया। इतनी शक्तिशाली इनका जो है नेवी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजेंद्र चोल जो है वो अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे और शैलेंद्र जो वहां के शासक थे जो कि बहुत ज्यादा व्यापारिक जो संबंध थे यहाँ से तमिल जो गिल्ड्स के साथ, यहाँ पे श्रेणियां जो यहाँ पे मौजूद थी जैसे कि अय्यावोल जो श्रेणी थी, उसके अलावा यहाँ पे नाना देसी नाम की जो श्रेणी थी, मणिग्रामम नाम की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां यहाँ पर मौजूद थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और वो अपने व्यापार में जो है लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए थे, परेशान करना शुरू किया था तमिल शासकों को और तमिल जो व्यापारी हैं और उनको जो है उन्होंने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है उसका जो व्यापारिक संबंध है वो सीधा जो है चीन के साथ स्थापित हो रहा था। ये बात भी उनको नागवार गुजरी और इसलिए जो है वो कुछ तरीके के पाबंदियां लगा रहे थे, जैसे कि अपने जो डॉक्स हैं वहां पे पायरेट्स को जो है अपॉइंट कर दिया जाता था उनके द्वारा, जिससे समुद्री जो लुटेरे हैं कि वो उनके माल को लूटें और उनको परेशान करें। तो ये जो श्रेणियां थी बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात ये जो मणिग्रामम, नाना देसी, अय्यावोल, ये जो श्रेणियां थी ये हम देखते हैं ये चोल जो सम्राट हैं शासक हैं उनको पैसा भी उधार दिया करती थी, मनी लेंड किया करती थी। तो इसलिए जो है हम देखते हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो राजेंद्र चोल की जो अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी, दिग्विजय की जो उनकी नीति थी, उसके तहत उन्होंने अपनी इस नेवी, इस मजबूत नेवी के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया पर आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरा उनको उन्होंने पराजित कर दिया पर उसको एनेक्स नहीं किया, उसको अपने साम्राज्य में उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल क्या किया, अपने जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए वहां से कुछ जो है बेनिफिट्स लिए और यही नहीं किया बल्कि उन्होंने वहां पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी एस्टेब्लिश किए। राजेंद्र चोल ने जो है शैलेंद्र जो थे शासक उस समय के उनकी पुत्री के साथ विवाह किया और ये विवाह किसी पीस ट्रीटी का जो है नतीजा नहीं थी, वो सिर्फ जो है उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा वातावरण अपने व्यापारियों को देने के लिए कि एक उनका
0: संबंधों का विस्तार
2: करने के लिए उन्होंने उसको वहां पर किया। हम देखते हैं कि अगर ये नेवी अगर नहीं होती, इतनी पावरफुल नेवी नहीं होती, तो ये ऐसा करना और जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जाकर जो है किसी को पराजित करना बड़ा मुश्किल होता। और नेवी के साथ एक चीज हम और देखेंगे कि यहाँ पर नेवी के साथ साथ ये जरूर है कि कार्टोग्राफी इनकी बहुत अच्छी होगी
0: जी,
2: मैप्स। बिना मैप्स के आप किस तरीके से किस दिशा में आपको जाना है तो हिंदुस्तान का मैप और आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका मैप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो कार्टोग्राफी बहुत अच्छी रही होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या जो है होना वो बहुत जरूरी है अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, समुद्री व्यापार पर जा रहे हैं
0: जी।
2: किस समय जाया जाए, तो हम देखते हैं कि ये जो है मानसून जो विंड्स होती थी उसका प्रयोग करते थे। तो मानसून विंड्स जब चलती थी उस दौरान जो है उन हवाओं के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हुए जब तब ये पूर्व की तरफ जो है जाते थे और जब सीजन का बदलाव होता था तो इनकी रवानगी होती थी
0: जी। तो यानी वो हवाओं की दिशाएं जो है नाव को आगे बढ़ाती हैं, जहाजों को आगे बढ़ाती रहे
2: जी।
0: बहुत ही रोचक बात ये आपने बताई। और हम ये भी देखते हैं कि आज भी हमारी नौसैन्य कमान जो है देश में अलग अलग स्थान पर, वहां हम राजराजा चोल की प्रतिमा देखते हैं, तो इतिहास का वो सूत्र हमारी आधुनिक नौसेना से भी जुड़ता है। हम जब देश में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम उस समय से यानी अपने इतिहास से भी ये शिक्षा लेते हैं
2: जी।
0: तो इसी मोड पर आपकी पसंद का एक गीत मनीषा जी,
2: क्योंकि हम लोग चोलों की बात कर रहे हैं, चोल शासकों की बात कर रहे हैं
0: जी,
2: तो इस संदर्भ में मुझे एक पिक्चर ध्यान आ रही है, एक मूवी जिसको मणि रत्नम साहब ने डायरेक्ट की है और इसका नाम है पोनिन सेल्वन। चोल जो राजा थे राजराज चोल उनके जीवन से इंस्पायर्ड है। तो उस मूवी का यदि कोई सॉन्ग अगर कोई गाना जो है अपने ऑडियंस को सुना सकें तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा
0: जी। बिल्कुल
2: जी।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में और इस गाने ने हमें झलक दी चोल साम्राज्य की। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं मनीषा अग्निहोत्री और देवेश विजय और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, साथ ही चोल साम्राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात कर रहे हैं, ताम्र पट्टिकाओं की बात हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जो वस्तु है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी देवेश जी आपसे। कुछ समय पहले जब हमारे नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ उस समय सिंगोल के बारे में जाना, तो सिंगोल भी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें कुछ बताएं।
1: ये बहुत अच्छी पहल रही हमारे गवर्नमेंट की, जिसको बहुत शुभ माना जाता है और पार्लियामेंट का भी, क्योंकि नया भवन का निर्माण हुआ है उसमें इसको स्थापित करके एक आकृष्ट भी किया गया कि इस महान जो दक्षिण भारतीय परंपरा की ओर ध्यान जाए सब लोगों का, तो ये एक बहुत ही शुभ चीज कदम उठाया गया। पर मैं यहाँ पर ना एक श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम पट्टिकाएं या इंस्क्रिप्शंस कुछ भी देखते हैं जो इतिहास के स्रोत होते हैं
0: जी,
1: तो हमें खाली ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए कि मेंशन क्या किया गया है, बल्कि ये भी कि एब्सेंट क्या
0: जी।
1: अब मैं एक बहुत अच्छी चीज चोल वंश की जो एब्सेंट है, सोर्सेज में मेंशन नहीं आता है, पर हम कंपेयर करके समझते कि भाई उत्तर में ऐसा हो रहा था
0: जी,
1: यहाँ पे है ही उत्तर में जौहर हो रहे थे, उत्तर में स्लेव मार्केट्स लग रही थी, हिंसा ब्रूटल बैटल्स तो दक्षिण में भी होती थी, लेकिन किस सहजता से दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारी संस्कृति पहुंच गई, उसमें कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई
0: जी।
1: तो ये एक कंट्रास्ट है, जौहर जैसी चीज कभी नहीं हुई क्योंकि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता था जीतने के बाद। ये एब्सेंट जो चीजें हैं वो भी हमें नोट करनी चाहिए।
0: तो मैं मनीषा जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, अगर हम कला संस्कृति की बात करें, तो वो उस समय कैसी थी चोल साम्राज्य के समय?
2: मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल चोल वंश में किया गया
0: जी।
2: स्थापत्य कला में जो है उसका बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल किया गया
0: जी।
2: मैं एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, तंजौर में जो बृहदेश्वर टेंपल है
0: जी,
2: जिसका एक्चुअल नाम जो है, वास्तविक नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर है, और ये बाद में बृहदेश्वर मंदिर जो है मराठों के समय में इसका नाम रखा गया
0: जी,
2: जो कि बेसिकली शैवाइट मंदिर है, शिव का लिंग जो है यहाँ पे स्थापित है। तो यदि आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें, बृहदेश्वर मंदिर को, मैं अभी हाल में होकर आई और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी उस मंदिर को देखकर, क्योंकि उत्तर भारत में हमें इस तरीके का कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है उसकी तुलना का। तो उसमें सबसे रुचिकर बात जो यहाँ पे जो स्थापत्य कला की है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मंदिर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मंदिर के अंदर ही किया गया है। इसके अंदर पूरी अगर आप दीवारें देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर की, और उस पे सब पे अभिलेख लिखा गया है
0: जी,
2: इंस्क्रिप्शंस है, और उसमें जो है अभिलेख के अंदर वहाँ पे रोज के रोज किस तरीके से कार्यभार मंदिर का चलाया जाता है
0: जी,
2: उसके बारे में सारी सूचना दी गई है, किस तरीके से प्रशासकीय कार्य होते हैं, कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, म्यूजिशियंस कौन से हैं, गणिकाएं हैं तो कौन है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो है इस मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का बारीकी से डिटेल मिलता है, उसका आकार क्या है, क्या वेट है, उसका एक एक डिटेल जो है मूर्तियों का उसके अंदर उल्लेख उसका किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही थी, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो बहुत बड़े गोपुरम मिलते हैं, दो गोपुरम गेट्स जो होते हैं
0: जी,
2: बहुत ही भव्य जो है द्वार इसके बने हुए हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो भव्य द्वार बने गए हैं ये जो है इसमें मॉर्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें सीमेंट लाइन ये जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसको इंटरलॉकिंग जो पद्धति है उसके द्वारा इतने बड़े ऊंचे द्वार जो हैं ये खड़े किए गए हैं
0: जी।
2: इसके अलावा अगर आप मंदिर का विमान देखें, जो गर्भगृह के ऊपर जो विमान है उसको अगर देखें, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर दो नंदी जो बुल्स हैं वो बैठाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है कलश भी हैं जो कि बहुत हैवी है, और जो कि 80 टन का जो ग्रेनाइट है उसको उसके ऊपर टिका के रखा गया है। तो 80 टन का ग्रेनाइट बहुत भारी ग्रेनाइट है जिसको बैलेंस करके उसको लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ग्रेनाइट जो है वो बहुत हैवी ग्रेनाइट्स हैं, और ये ग्रेनाइट जो लाए जाते थे वो 65 किलोमीटर दूर जगह से लाए गए थे, इरूर नाम की जगह है, वहां से उसको लेके आया गया। और ये जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट एक ऐसी क्वालिटी के ग्रेनाइट है जो कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स के मन जो है मिट्टी के अंदर जाने के बाद, बहुत डीप में जाने के बाद जो है वो उस तरीके की जो है ग्रेनाइट बन के निकलते हैं। तो आप समझ सकती हैं क्वेरिंग में कितना मुश्किल रहा होगा, जितने भारी भारी ग्रेनाइट को निकालना, फिर उस ग्रेनाइट को 65 किलोमीटर लोड करके लाना, उसको अनलोड करना और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल करना। तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी तभी ये हो रहा होगा। और उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा दी जा रही होगी, इस तरीके के इंजीनियर्स जो है वो तैयार किए जा रहे होंगे। एक और जो बात मैं प्रौद्योगिकी के कंटेक्स्ट में जो बोलना चाहूंगी बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, यहाँ पे 2010 में ASI ने एक मंदिर के साथ ही जो है एक होल किया था। होल करने पे उनको वहां पे सैंड मिला और उसके बाद ही पता चला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सैंड बॉक्स के ऊपर टिका हुआ है। सैंड बॉक्स किस लिए? क्योंकि ये सैंड बॉक्स जो है वो अर्थक्वेक को रोकने का काम रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये जो सैंड बॉक्स है। तो आप सोचिए कि उस समय इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए
3: दूरदर्शिता रही होगी,
2: तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हमें उसका एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है पूरा बहुत बड़ा शिवलिंग है, 2 स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर वो शिवलिंग पूरा फिट कर होता है। नंदी बुल जो है वो एक ही ग्रेनाइट से बनाई गई है वो है वहां पर
3: जी।
2: उसके अलावा आप देखेंगे जो वहां पर अंदर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, लेकिन आपको उसमें फ्रेस्कोज मिलेंगे उनकी वॉल्स पे, पूरा जो है आपको डांसिंग गर्ल्स और उस तरीके की जो है पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती है। और ये मंदिर हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लाइब्रेरीज होती थी, यहाँ पे जितने भी तमिल आपके जो टेम्पल्स हैं वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको संजोया जाता था लाइब्रेरी में
3: जी।
2: और ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र भी थे, यहाँ से शिक्षा जो है वो दी जाती थी, खासकर जो धर्म से संबंधित जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, आगम टेक्स्ट है, ये सब वो पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जिसको फर्दर जो है कुछ अगर अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए एडवांस्ड जो है एजुकेशनल सेंटर्स होते थे
3: जी,
2: जिनको मर्चेंट सपोर्ट करते थे, रॉयल फैमिली सपोर्ट किया करती थी और मंदिर सपोर्ट किया करते थे।
3: यानी हम एक तरह से देखें तो मंदिर शिक्षा के केंद्र थे और हमने ऐसा सुना है कि हर मंदिर के प्रांगण के आसपास चिकित्सालय भी उस समय होते थे, मंगल कार्य वहां पर होते थे, वैवाहिक कार्य होते हैं वो होते थे, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी मंदिर के प्रांगण का
1: लोन भी
3: जी, जी और स्कॉलरशिप और लोन भी दिया जाता था मंदिर से ही जी। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है चोल साम्राज्य के बारे में और मंदिर के बारे में आपने हमें इतना कुछ बताया। यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना,
2: मेरी फरमाइश जो है इस समय है, ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, ये मेरा इंडिया।
3: तो आपकी पसंद का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम चोल साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख हुआ है जो अपने देश आई हैं और इनकी क्या विशेषता है ये हमने जाना है हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। देवेश विजय जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की

0: प्रोफेसर मनीषा अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ। मनीषा जी, हम गाने से पहले बात कर रहे थे मंदिर की और उसकी विशेषताओं की। नटराज की जो एक मूर्ति है, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य से जुड़ी है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और मैं कहूंगी कि कलाकार तो विशेष रूप से इससे जुड़ते हैं। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं।
1: ये जो मूर्ति है, एक तो यहाँ पर क्या था कि ये एक तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है
0: जी,
1: उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया। मैं ये अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बी वैक्स जो होता है उसको जो है एक तरीके का जो कपूर होता है कैम्फर, उसको तेल में उसको गूंद कर उससे एक सांचा बनाया जाता था
0: जी।
1: और उस सांचे में फिर जो है मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और उस मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसको जो है भट्टी में जो है उसको पकाया जाता था। भट्टी में पकाने के बाद जो है वो जो वैक्स होता था वो तो पिघल के हट जाता था, और जो क्ले का जो सांचा था वो निकल कर आता था। और उसके बाद जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर्स बनाई गई या मूर्तियां बनाई गई, उसका जो धातु है, और ये धातु जो है वो पंच धातु होते थे जिसमें कि ब्रॉन्ज, कॉपर, लेड, ये सारा जो है मिलाकर जो है इसको बनाया जाता था पंच धातुओं को। तो उसको फिर मेल्ट करके जो है उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता था, और जब वो सांचा उसमें सेट हो जाता था, सूख जाता था, तो उस सांचे को तोड़ दिया जाता था जब वो धातु जो है सेट हो जाता था। तो इस प्रकार से एक सांचा जो है वो केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता था, उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है इस टेक्निक के द्वारा जो है निर्मित हमारे पास बहुत सी ब्रॉन्ज की जो है हमारे पास मूर्तियां
0: जी है। क्या आज भी हमारे पास है मंदिरों के अतिरिक्त?
1: मंदिरों के अतिरिक्त हमारे पास म्यूजियम्स में है, म्यूजियम में बहुत अच्छा कलेक्शन है,
2: तो म्यूजियम विदेशी म्यूजियम्स में भी है
0: जी।
2: नटराज बहुत सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट माना जाता है
0: जी। इस रोचक बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: देवी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे संग्रहालय हैं, वो क्या भूमिका निभाते हैं इतिहास को भविष्य से जोड़ने में?
2: इससे पहले मैं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक बात कहना चाहूंगा, जो कि बड़ा सकारात्मक उपयोग चोल वंश ने किया, इरिगेशन। हमारे साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा जो समस्या रही है, मॉनसून का फेलियर और उसके साथ आने वाले फेमींस में लाखों लोगों का मरना। उसके लिए चोल वंश ने खास तौर पर न केवल टैंक्स बड़े स्तर पर बनवाए जिनमें पानी इकट्ठा रखा जा सके,
1: जी,
2: डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन, कावेरी पर कैनाल्स को डाइवर्ट करने के लिए पानी को ये शुरू किया। ये चोल वंश का, क्योंकि राजा ठीक है टैक्स ले रहा है अपने शौर्य के लिए, अपने वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या दे रहा है
1: जी?
2: ये बहुत वेलफेयर पॉलिसी क्या है, ये कंपेयर किया जाना चाहिए। ये सारे बड़े बड़े साम्राज्यों ने नहीं किया, लेकिन चोल वंश का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था
1: जी।
2: और एक और इसी तरह से हमें उनकी इंस्क्रिप्शंस और इन ताम्र पट्टिकाओं में मिलता है टैक्स रिलीफ। ट्राउट्स का मेंशन आया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं आया, फॉरेन ट्रेवलर्स भी कई आए, चीन से भी आए, जो दक्षिण में भी आए थे, कई अरब ट्रेवलर्स आए, लेकिन किसी ने भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जैसा शाहजहां के टाइम में करोड़ों लोग मर गए थे जब दक्कन में अकाल पड़ा। अंग्रेजों के टाइम में कितने करोड़ों लोग मर जाते थे
1: जी,
2: लेकिन चोल वंश में ऐसा नहीं हुआ। उसमें दो ये चीजें थी, एक तो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का यूज
1: जी, और कावेरी नदी पर बांध जो है आज भी जानते हैं उसके बारे में लोग जी,
2: और कनाल सिस्टम अभी तक है, और टैक्स रिलीफ,
1: पोनगेरी जलाशय उनको कहा जाता था
2: जी,
1: जी, जो करते थे, सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी,
2: महत्वपूर्ण इनका योगदान था।
1: तो आपने बताया कि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और दूसरा मुश्किल के समय लोगों को कर से छूट दी जाती थी, और जो कार्य हैं वो किए जाते थे उनकी भलाई के लिए जी।
2: और एक और चीज बड़ी अच्छी थी स्थानीय स्तर पर, वो है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो भी काफी हद तक स्वशासन का हिस्सा थी
1: जी।
2: और कहीं भी हमें उल्लेख नहीं मिलता कि फोर्स का बहुत ज्यादा, कहीं प्रेजेंस नहीं थे, खाली ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म से
1: जी
2: व्यवस्था बरकरार रख ली जाती थी
1: जी।
2: ये बड़ा ही पॉजिटिव पहलू था
1: जी। तो हम संग्रहालयों का उल्लेख करते हैं, हमारे युवा साथी अगर इस बारे में ज्यादा जानना चाहें तो ऐसे में उनके पास क्या क्या माध्यम है?
2: देखिए, पुस्तकों के अलावा और पॉडकास्ट के अलावा और आपके प्रोग्राम के अलावा उन्हें जरूर म्यूजियम जाना चाहिए, और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देख कर कि मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था थी ड्रेनेज की, या जो आप नालंदा के बीच में खड़े होकर सांझ के समय जो महसूस करेंगे, वो केवल पुस्तकों से या आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं आ सकता। तो इन सब का जरूर विजिट करना चाहिए युवाओं को, और ग्रुप बना के जाना चाहिए। उसमें जो चर्चाएं होती हैं, जो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है
1: जी। यानी प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा प्रेरित किया ही है कि पर्यटन भी सुचारू रूप से चले, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, और पर्यटन के दौरान हम जो सीखते हैं कई बार वो हमें किताबों में नहीं मिलता, व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने चोल साम्राज्य के बारे में जो जाना है, समझा है, उसे हम और गहन अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे, और हम संग्रहालयों की यात्रा भी करेंगे, हम दौरा करेंगे ऐसी जगह का जहां से हमें अपने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानने समझने को मिले, और हमारे पर्यटन में भी हम ऐसी जगह जरूर जाएंगे जो हमें बताती हो हमारी संस्कृति के बारे में, और हमारे जो अलग अलग साम्राज्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो देश काल परिस्थिति को अगर हम समझना चाहें तो ये भी हमें जानना होगा कि इतिहास हमेशा देश काल परिस्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है, और उससे बहुत कुछ सीखकर हम भविष्य की वो डोर थाम सकते हैं जो हमें हमारी जगह पुख्ता रखने में मदद करेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत मानचित्र पर सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है, जिसने सदियों तक दूसरे देशों को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो इसी मोड़ पर

0: अपने विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश विजय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा अग्निहोत्री जी आपका।
1: थैंक यू नीलम जी।
0: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: नालंदा के बीच में खड़े होकर सांझ के समय जो महसूस करेंगे वो केवल पुस्तकों से या आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं आ सकते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की

0: रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे कमीशन्ड 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स INS दुनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय इन कोलकाता, डिजाइन बाय द नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। द वेसल्स आर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन कॉम्बैट ऑपरेशंस, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
4: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और साथियों एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है
3: Defense Minister Rajnath Singh also said that the tri-commissioning of the three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. This theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "Yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit." President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. A large number of public representatives, officials and citizens were present at the event. Addressing the event, the President said, "Yoga is a celebration of India's great tradition." She said, "Yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life." The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said that entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. The admit card for the 3rd of May exam shall not be valid for entry today. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has urged the students to take the exam without fear and wish them the very best. Talking to media in New Delhi, the Education Minister assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. Union Home Minister Amit Shah paid tribute to Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS founder Dr. Keshav Baliram Hedgewar on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah remembered Dr. Hedgewar for establishing the Sangh and spreading the ethos of nation first and cultural nationalism among the people. In cricket, India A were 221 for 3 in 28 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए आज का प्रसारण शुरू करने से पहले मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज रविवार है। आज का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम

1:10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत, 2:00 मिडडे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैं ऐसा ही हूँ फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनाएंगे बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत केके की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कौशिर ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल सोमवार है। कल ठीक 12:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर कार्यक्रम गीतमाला, 1:40 पर कार्यक्रम वतन के तराने, 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम चयनिका और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है यस बॉस।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योत दिसपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। सैनिक भाइयों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। फिल्म का नाम है आर पार।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है,

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

0: Commission of India in Bangladesh. Hundreds of yoga enthusiasts gathered to participate in the common yoga protocol session led by yoga teachers and students of the IGCC. Earlier, more than 500 participants gathered in Riyadh yesterday to celebrate Yoga Day, highlighting the growing popularity of yoga in Saudi Arabia and its role in promoting health and family and well-being. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace. He says special steps are being taken to enhance domestic defense production capacity.
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: Defence Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
2: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department IMD has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है।

0: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी बेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मुकेश और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है श्री 420।

पांच बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मैं जो चला गया सनम तो ये रुत भी चली जाएगी। ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक। मैं जो चाहे यार करूँ, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

प्यार करूं, चाहे ब्लॉक के चाहे खेलूं, चाहे कली

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरे सनम।

सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर के इस बेहद खास एपिसोड में, जी हाँ, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों, सुबह से योग दिवस की शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं का तांता तो लगा ही होगा, लेकिन हमें भी अवसर मिला है इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक एक बार फिर से योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चलिए मिलते हैं योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता से, जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालू गुप्ता, और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, धन्यवाद। योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और ये बहुत ही बड़ा विषय है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय है। तो 21 जून का जो दिन रखा गया है, यह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, और हम आज योग दिवस के अवसर पर बहुत सी चीजें सीखेंगे और समझेंगे, और ये जानेंगे कि योग का सही अर्थ क्या है।
1: तो डॉक्टर गुप्ता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना आवश्यक है, ये अब हम सभी कुछ को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर जानेंगे योगाचार्य शालू गुप्ता से, आपसे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है योग फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग।
2: देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसा हम हमेशा से समझते आए हैं, योग किसी भी चीज को जोड़ता है। तो योग हमें मानसिक तौर पर शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य की बात करें तो योग हमें पूर्ण तरीके से जोड़कर हमें एक पूर्ण हेल्थ मिलती है। अब महर्षि पतंजलि ने इसलिए योग को अष्टांग योग कहा है, और योग को 8 पहलुओं में बांटा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

0: अब यदि हम यम नियम की बात करें तो यम नियम है शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि। योग आसन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों पर निजात पा सकते हैं। जब हमारा शरीर शुद्धि हो गई है, आहार शुद्धि हो गई है और हमारा शरीर अपने आप को कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में रख सकता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो हम मानसिक तौर पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जिससे हम जो आगे के पड़ाव हैं प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो योग में की जाती हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए, तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल शालू जी, तो योगाचार्य शालू गुप्ता हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सुजाता रथ और हमारे तमाम लिसनर्स बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हमारे आज के योगा एक्सपर्ट से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे आज के बेहद खास रेडियो डॉक्टर में स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे।

0: स्वास्थ्य के लिए योग, यही आज का हमारा विषय है ऑन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो शालू जी, आपने बताया कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ही है जोड़ना। तो एक सवाल आया है मनोहर लाल गांधी जी का कि योग द्वारा हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, आज का जो समय है इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं मेंटली। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एट द वेरी सेम टाइम। होता क्या है कि हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो ऑफिस एनवायरमेंट है, इससे हमने बिल्कुल अपनी बॉडी की प्रायोरिटी को खत्म कर दिया है। हमें सीखना यह है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया सीखने के लिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारा शरीर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। जब तक हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आ जाती तब तक हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। योग करने से क्या होगा? योग का सबसे पहला अर्थ ही है जोड़ना। और जैसे मैंने कहा, योग को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में नियम बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने दिनचर्या में नियम बनाएंगे वैसे वैसे आपके हर चीज का नियम हो जाएगा। सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय, शौच जाने का समय। और जैसे जैसे आपका समय फिक्स होता जाएगा वैसे वैसे आप ये समझेंगे कि आपके शरीर में जो सुबह उठते ही थकान होना, सारा दिन परेशानी रहना, बॉडी में लथार्जी रहना, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना, ये सब चला जाएगा। आप अगर एक अच्छा आहार अपनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल लिक्विड्स लेंगे, तो उसको लेने के बाद आपका शरीर निरोगी रहेगा। और जब शरीर निरोगी रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जीवन में आपके शरीर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे शरीर निरोगी होगा उसके बाद जब हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम अपने शरीर को जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे ऐसे हम अपने शरीर को परमात्मा से मेल कर पाएंगे, जिसमें फिर हमारी धारणा, ध्यान और समाधि आ जाती है, जिसमें हम राम नाम, प्रभु नाम सब कुछ जोड़ देते हैं।
0: जी, कुछ कॉलर्स हैं। हेलो।
2: हाँ दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
2: सतीश कुमार पांडे।
0: हाँ, सतीश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
2: जी। और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। डॉक्टर मैम, मेरे से आपसे सवाल ये है कि कुछ आंखों के लिए कोई योगा है क्या?
1: हाँ जी, बिल्कुल है।
2: बता दीजिए।
1: हाँ जी, आपकी आंखें कमजोर हैं या आंखों से पानी आता है?
2: जी पानी नहीं, मैम आँख थोड़ा कमजोर है।
1: ठीक है, देखिए आंखों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं त्राटक। वो हमारे षटकर्मा का पार्ट है। उसमें जनरली हम करते क्या है कि आपने किसी भी, त्राटक का अर्थ है कि आप किसी भी वस्तु पर लगातार देखते रहें। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने मान लीजिए कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया और एक मोमबत्ती को जला लिया। आप उस मोमबत्ती की लौ को एक टक देखते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। मतलब आंसू आने से पहले ही आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये एक्सरसाइज आप कई और जगह और कई और चीजों से भी कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज है, अपनी आंखों को आंवला से धोएं, आंवले के पानी से धोएं या त्रिफला के पानी से धोएं। रात को त्रिफला भिगा दें और सुबह उससे अपनी आंखों का आई वॉश करें, उससे भी आंखों में बहुत ही अच्छा असर आता है। तीसरी चीज
2: त्रिफला।
1: और तीसरा है विटामिन ए रिच चीजें खाएं, जिनमें जैसे पपीता है, सेब है, अनार है। आहार का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा, तभी आपकी आंखों में रोशनी वापस आएगी और आपकी आंखें पहले से बेटर हो जाएंगी।
0: शुक्रिया सतीश जी, दार्जिलिंग से हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
0: हाँ नमस्कार,
3: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: जी राजा साहब, बताइए।

0: जी, आज जैसा कि योग दिवस है तो मैं खास करके ये जानना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का काम होता है कि काफी 8-9 बजे से बैठो और शाम को लगभग 5-6 बज जाता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टहल नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है कुछ मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो कौन से आसन या योगा है हमें मैम से पूछना है कि जो अपने आप सुबह या शाम में उनका उपयोग करें और अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान केंद्रित करके अपनी सेहत को फिट रखें और ज्यादा मोटापा ना बढ़ने पाए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ जी राजा जी, देखिए इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नंबर वन, जब आप अपने ऑफिस में आते हैं और आपको ये पता है कि मैंने 7 से 8 घंटे बैठना है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपने काम के दौरान हर 30 से 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट मैं टहलने के लिए जाऊं, अपनी सीट पर ही ना बैठा रहूं। नंबर थ्री, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि टांगे लटकाकर जमीन पर ना रखी हों, मतलब ये है कि आप पैरों के नीचे एक छोटी सी चौकी रखें कि आपके पैर जमीन से ऊपर की तरफ हों, इससे आपकी कमर पर कम असर आएगा और आप ज्यादा देर तक अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। चौथी चीज है कि जो भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं अब ऑफिस आ गया हूं तो मैं डिब्बा बंद खाना ले आया हूं तो मुझे बस रोटी सब्जी खाकर घर चले जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, वहां पर अवेलेबल जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी जूसेस हैं या जो भी सलाद है, आपको उसका पूरा सेवन करना है। यदि आपका भोजन अच्छा है तो आपके शरीर में फैट जमा नहीं होगा।
0: जी।
1: अब रही बात आसन की, आसन के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जो लोग बैठे रहते हैं, कि हमेशा जो आगे झुकने वाले आसन होते हैं जिसमें हमारा पेट दबता है, हमें ऐसे आसन ज्यादा करने चाहिए। और क्रियाओं में आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं।
0: आसन सुबह करें कि शाम को भी कर सकता है?
1: शाम को सूरज ढलने से पहले आप कर सकते हैं। और खाने के मतलब खाली पेट होना चाहिए जब भी आप आसन करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अग्निसार क्रिया बहुत ज्यादा फायदे मन है, जिसमें सांस लेना, सांस छोड़ना और उसके साथ साथ पेट को घुमाना, इससे बहुत लाभ होगा आपको।
0: ओके मैम,
2: जी जी राजा साहब, बहुत ही अच्छे से शालू जी ने हमें बताया ये सारी बातें। एक मैसेज है मोहम्मद सरफराज आलम जी का दर्शना बाजार से कि ये साइटिका के दर्द से परेशान है, कौन सा योग करना चाहिए?
1: हाँ जी, देखिए साइटिका में आप साइटिका में वैसे तो बहुत से आसन होते हैं, जैसे गरुड़ आसन है, वज्रासन है, गौमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है, लेकिन हमें हर इंसान को अपनी बॉडी का नेचर देखना चाहिए कोई भी आसन करने से पहले। यदि तो आपको दर्द एक पैर में जा रहा है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, और यदि दर्द दोनों पैरों में जा रहा है तो कुछ और प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। तो जो बहुत बेसिक सी चीज है उसमें क्या है, जैसे आप सीधे लेट जाएं और अपने पंजों को एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो कम से कम 10 बार इसे रिपीट करें दोनों ही पंजों के साथ, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका पैर है उसको आपको सीधे ही लेटे रहना है और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। जब आपकी टांग ऊपर उठेगी तब तक उठाएं जब तक आपसे सहन होता है कि वो दर्द हो रहा है। जब आपको लगता है दर्द सहन से बाहर है तब वहां स्टॉप कर दीजिए। तो उस पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको आसन के नाम बता दिए हैं, बस आपको खाने पीने में भी ये ध्यान देना है कि आप वायु कारक चीजें ना खाएं, दूध और दही का सेवन छोड़ दें, और हार श्रृंगार के पत्ते बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, उन्हें उबाल कर उसका पानी पी लीजिए।
2: रोहतक से नितिन कुंडू जी का सवाल है कि एट व्हाट एज आवर चिल्ड्रन कैन स्टार्ट योगा?
1: देखिए योगा के लिए तो कोई एज ही नहीं है। आपने देखा ना, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है और अपने बेड पर होता है वो भी अपने हाथ पैर मारता रहता है, तो योगा के लिए कोई एज नहीं है। योगा और योग आसन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, उम्र नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है या कोई और है तब हम योग नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी उम्र में योगा कर सकते हैं।
2: तो अगर यहाँ पर अगर कोई बीमारी है किसी को तो वो किसी प्रशिक्षण

0: चिकित्सक के नियंत्रण
1: यस
0: अगर आप मार्गदर्शन में करें।
1: हाँ जी, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी भी योग शिक्षक के प्रशिक्षण में ही वो करेंगे। हाँ जी।
0: और इन्होंने मैम एक और क्वेश्चन में किया कि प्लीज सजेस्ट योगा फॉर शार्प मेमोरी।
1: ओके, देखिए शार्प मेमोरी के लिए तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपने गाना सुना, हम कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसपे जब वो बजते हैं तो हमारे पैर धुनकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहते हैं, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब ये बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल शांत है। तो शार्प मेमोरी के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल शांत धुने सुने, ओम चैंटिंग, ओंकार, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और डीप ब्रीदिंग करें। अच्छी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करें, सांस भरें, रोकें और छोड़ें। जैसे जैसे आपकी सांस को रोकने की टेंडेंसी बेटर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी।
0: तो शालू जी, अपने गानों की बात कही कि ऐसे गाने जो जिनको हम एकदम शांत रहकर सुन सके, तो ये गाना जो मैं आपके पसंद का प्ले करने जा रही हूं, मेरे ख्याल से ये गाना उस कैटेगरी में आता है। सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर विशेष है ऑन इंटरनेशनल योगा डे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, योगाचार्य। डॉक्टर गुप्ता, कुछ देर पहले हमने गाना सुना था आपके पसंद का, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं उनका ये कहना है, खास करके दिनेश दयाल जी ने कहा है कि आपके गाने को सुनकर हमें याद आया कि ओ योगा तेरे बिना क्या जीना।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो आज योग जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। मैं कहूंगी कि धीरे धीरे सारे विश्व में इस ये संदेश फैल चुका है और सभी के जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ कॉलर्स हैं जिनके बाद हम सुन ले। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ जी।
3: हाँ नमस्कार, मैम गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार गुरविंदर जी।
3: डॉक्टर शालू गुप्ता जी को भी नमस्कार और प्रणाम।
2: नमस्कार।
3: हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी मरीज का एलोपैथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में इलाज चल रहा है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर योग की सहायता ले ली जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो क्या ये संभव है?
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव है। और सबसे पहले योग की सहायता लेनी चाहिए, फिर कहीं और जाना चाहिए।
3: मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि कई बार खाना खाते समय हिचकी आ जाती है, तो उस समय कौन सा योग करें?
2: वैसे ऐसे में देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम अपनी जीभ को पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। जनरली आप 5-7-10 मिनट के लिए जीभ को पकड़ लेते हैं तो हिचकी आना बंद हो जाती है। दूसरी चीज है आप तुरंत पानी पी लें, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। एक व्हाट्सएप मैसेज है शालू जी, ये लिखा है सरद चंद्र पाणिग्रही जी ने ओडिशा से। इनका 3 महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनकी, और ये लिखते हैं कि सर्जरी से पहले ये बहुत सारे योगासन किया करते थे, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, वश्चिका, वज्रासन और भी बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए हैं। और अभी इनके जो स्टूल है वो क्लियर नहीं होता है, तो इन्हें पूछा है कि काइंडली एडवाइस विच टाइप ऑफ योगा और प्राणायाम कैन आई कंटिन्यू।
2: ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेट बंधा है। तो आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, उससे भी आपका पेट साफ होगा। दूसरी चीज है मंडूक आसन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
1: ये आसन ये कर सकते हैं। और पहले जो आसन किया करते थे वो
2: उसमें ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी हो चुकी है। अगर आपकी बॉडी फुली रिकवर हो चुकी है तो आप धीरे धीरे आसन को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है तो आप और थोड़े दिन रुक जाइए, तब तक आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं।
1: जी हेलो।
4: हेलो।
1: हाँ जी
4: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
4: अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: जी जी अंशुल बोलिए।
4: जी मैम मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कुछ खा लिया उसके बाद गैस बन गई, बेवजह भी बन गई, क्या योग के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है? दवाई बहुत खा ली।
2: हाँ जी अंशुल बिल्कुल हो सकता है। आपको ये देखिए कि जब आपको गैस बनती है तो आपका पेट फूल जाता है खाने के बाद।
4: जी बिल्कुल।
2: ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा हो तो आप वायु मुद्रा ट्राई कीजिए, जिसमें आपने अपनी जो सबसे पहली उंगली है हाथ की, उसके नाखून पर अंगूठे को रखना है। तो वायु मुद्रा जब हम करते हैं तो हमें डकारें आना शुरू होती हैं और हमारे पेट में जो जमा गैस है वो निकल जाती है। दूसरी चीज है कि गैस जो बनती है उसका सबसे ज्यादा समाधान होगा आपके खाने

0: खान पान से। जब आप अपना खान पान बदलेंगे तब गैस का समाधान होगा। तो आप खाने में जो कोशिश कीजिए, जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा खाइए, जूस को ज्यादा लीजिए और पका आहार को कम कर दीजिए। और जब भी आप खाते हैं खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन पानी से ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा गैस है, तो आप रात को सोने से पहले अमलतास ले सकते हैं। अमलतास एक बहुत अच्छा हर्ब है, बहुत इजीली मिल जाता है। उसको उबाल के रात को पानी पीकर सोइए तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको गैस नहीं बनेगी।
1: तो मैम ये वे वजह जो डकारें आती हैं क्यों आती हैं?
0: ये इसलिए आती है कि आपके अमाशय में जो खाना है वो पड़ा सड़ रहा है और वो निकल नहीं रहा। जैसे एक डस्टबिन में कूड़ा रहता है ना, तो उसमें से गैस निकलती रहती है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल उसी के लिए है। तो हमारे पेट में जो मल नहीं निकल रहा है इसलिए गैस बनती है। तो कुछ दिन आप अमलतास का पानी ले सकते हैं, दूध का फटा पानी भी ले सकते हैं। उससे जो आपके आंतों में गंदगी जमा है वो निकल जाएगी और फिर आपको गैस बनना बंद हो जाएगी।
2: राममोहन, थैंक यू। राममोहन विश्वकर्मा जी का मैसेज है इटावा से। ये सिलाई बुनाई का काम करते हैं और इन्हें कम से कम 10 घंटे बैठना पड़ता है। इनकी उम्र है 32 साल। इन्होंने लिखा है कि इन्हें कौन सा योगासन करना चाहिए।
0: देखिए, इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका काम है जैसे बैठने का और आपको अपने कंधे और हाथ यूज करने हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। जैसे आप ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उन्हें गोल गोल घुमाया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। उसके बाद अपना पूरा हाथ सीधा किया और हाथ को घुमाया, जिससे आपके जो सर्वाइकल जॉइंट्स हैं, जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। जितना ज्यादा आप अपने शोल्डर जॉइंट्स को और सर्वाइकल जॉइंट्स की मूवमेंट रखेंगे, उतना ज्यादा आप लंबे समय तक अपने काम को कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो आपकी जो आपका नेक रीजन है, जो आपकी गर्दन है, उसको भी उस अपनी ठोड़ी छाती पे लगाइए और फिर सांस भरते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो यदि आप ये तीन चीजें कॉन्टिन्यूसली फ्लेक्सिबली करते रहेंगे, सुबह 15 से 20 मिनट अपने आप को दीजिए, इससे आपके ज्वाइंट्स खुले रहेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
2: जी, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि जिनका बैठने का काम है लगातार ना बैठे रहें।
0: हाँ जी, हाँ जी, लगातार ना बैठे रहें और बीच में उठ के भी जब आपको लगता है हाथ पैर थोड़े से अकड़ गए हैं या कुछ है, तो फिर से वो एक्सरसाइजेस दोबारा कीजिए, मूव करते रहिए। हाँ जी,
2: हेलो।
3: जी हेलो।
2: हाँ, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं अनुराग वाजपेयी बोल रहा हूँ, यहाँ रायबरेली से।
2: जी अनुराग जी, बोलिए।
3: मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अनुलोम विलोम बीच बीच में, जैसे 1-2 महीने की है, बीच बीच में जब करते हैं तो कुछ इधर राइट इधर बाएं साइड में सर में ऐंठन टाइप में होती रहती है, हो जाती है, और जब बंद कर देते हैं तो ठीक हो जाती है। तो इससे क्या कुछ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अनुलोम विलोम तो जैसे हमें सूट ही नहीं करता?
0: अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है। आपको कहीं साइनस की तकलीफ तो नहीं है?
3: नहीं, एंजाइटी की तकलीफ है, मेडिसिन खाते रहते हैं।
0: ओके, तो ये तो हो सकता है कोई एंजाइटी का साइड इफेक्ट हो। वैसे अनुलोम विलोम से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको थोड़े समय के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए रेगुलर। जब आप थोड़े थोड़े समय के लिए करेंगे, मतलब जैसे 5 मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए किया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगी। छोड़िए मत इसे, बट इसका बेनिफिट ही होगा आपको।
2: जी,
0: आप एक काम कर सकते हैं आप, कि आप अपनी नाक में 3-3, 4-4 बूंद तेल डालिए रोज, कुछ दिन के लिए डालिए और फिर बताइए, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या ये ऐंठन हो रही है।
2: ओके, तो राय बरेली से हमारे ये श्रोता थे। तो शालू जी, अनुलोम विलोम जो है मुझे लगता है कि सबसे आसान
0: है,
2: योगासन हर कोई इसे कर सकता है ना। तो क्या फायदे हैं इसके?
0: अनुलोम विलोम तो देखिए, सांसों का लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, हम कहते हैं ना कि वायुमंडल में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तो वायु है, वायु और जल है, तो जब हमारी सांसों का अंदर जाना और बाहर आना ये पैसेज बिल्कुल क्लियर होता है तो सबसे ज्यादा असर हमारी मेमोरी पर, हमारी एंजाइटी लेवल्स पर, हमारी सोच पर पड़ता है। अब आजकल क्या है ना कि बंद कमरों में हम बैठे हैं और हम वही ठंडी हवा ले रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं, तो जब तक खुली हवा अनुलोम विलोम

0: जब जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे एयर पैसेज पूरी बॉडी में होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है. वी फील हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी.
1: चलिए हैप्पी एंड हैप्पी हम फील करेंगे एक और गाना सुनने के बाद. लेकिन एक सवाल मैं ले लेती हूँ सीमा गांधी जी का. गाजियाबाद से लिखा है कि हम महिलाएं मॉर्निंग में घर का काम होने के कारण योगा प्राणायाम नहीं कर सकती, क्या दोपहर और शाम के वक्त हम योग कर सकती हैं?
0: बिल्कुल कर सकती हैं. देखिए शाम में कर सकती हैं क्योंकि योग करने के लिए खाली पेट या खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद ही योग करें. दोपहर में ना करें, मैं सजेस्ट करती हूँ शाम को करें. और जो महिलाएं योग नहीं कर सकती हैं सुबह, वो योग की जगह खूब सारा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ये कोशिश करें कि वो 10 बजे तक भूखे पेट ना रहें. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. कोकोनट वाटर लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लें, उससे भी वो भी योग का ही हिस्सा है. आप योग को सिर्फ योग आसन से ना जोड़ें, योग का अर्थ आहार भी है. तो आप एक अच्छा आहार फॉलो कीजिए मॉर्निंग में और शाम को योगासन कर लीजिए. दैट विल गिव यू अ परफेक्ट हेल्थ.
1: जी वैसे शालू जी इतने सवाल आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपको आज क्या कहते हैं, आपको आज बोलने का ही मौका मिलेगा हमारे शो में. लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शालू जी थक जाए, तो चलिए उनकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं हैप्पी हैप्पी करने के लिए.

0: एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑन इंटरनेशनल योगा डे। आज का हमारा रेडियो डॉक्टर है स्पेशल ऑन वर्ल्ड योगा डे, योग फॉर हेल्थ। हमारी एक्सपर्ट शालू गुप्ता जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, इतने कॉल्स आ रहे हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो शालू जी, हम अपनी तरफ से आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकते क्योंकि श्रोताओं की तरफ से ही बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, अजय कुमार बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी अजय जी बोलिए।
1: कुछ ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, छह सात से और 12-13 साल तक, इन बच्चों के बारे में मैम कुछ बताइए, इनके लिए योगा कुछ बता दीजिए बच्चों के लिए।
2: बच्चों के लिए तो देखिए सबसे अच्छा योगा ही खेलना है। अगर आप बच्चों को अगर हम देखिए जब पहले की बात भी करें तो यदि बच्चे बाहर आपको सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बाहर निकलने दें, बच्चों को घर में ही ना बंधे रहें। उनकी एक्टिविटीज फिक्स कीजिए कि उन्हें एक घंटा रोज साइकिलिंग करनी है या एक घंटा मिट्टी में खेलना है। अपने आप में ये सबसे अच्छा योग है बच्चों के लिए। बच्चे तो चलते फिरते ही इतने सारे स्टेप्स कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी नहीं कर रहे तो घर में आधा घंटा डांस कर लें, सबसे अच्छा योग यही है बच्चों के लिए।
1: धन्यवाद।
2: हाँ जी
0: शुक्रिया। हेलो।
3: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी
3: जी, एजाज अहमद, एजाज लहरपुरी
0: जी, बोलिए।
3: ऐसा कोई योग बता दें आसान जिससे दिल दिमाग और लेंस स्वस्थ रहे।
0: जी
2: देखिए, दिल दिमाग स्वस्थ तभी रहेगा जब हम पूर्ण योग करेंगे जिसमें हमारा आहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और प्राणायाम। यदि आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, मतलब ये है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है और साथ में प्रकृति के दिए हुए प्रॉपर जो प्रकृति ने दिया फल और सब्जियां उनका सेवन आप करते हैं और आप आधा घंटा हंस भी लेते हैं तभी आपका दिल और दिमाग स्वस्थ रहेगा। कोई एक योग आसन का नाम नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, ये एक टोटल हेल्थ है जो आपको लेनी है। तो अपने आहार का भी ध्यान रखिए, खूब मौज मस्ती कीजिए और कुछ चीजें प्रभु पर छोड़ दीजिए कि यदि जीवन में कोई तकलीफ आती है तो जिसने दी वही ले लेगा। अगर हमारा ये हमारा जज्बा है तो हम दिलो दिमाग से हमेशा शांत रहेंगे।
0: जी
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लहरपुरी साहब कॉल करने के लिए। एक मैसेज है शालू जी, महापारा जी का है, लिखा है कि आई वांट टू नो योगा फॉर हाइपर थायरॉइडिज्म एंड व्हिच काइंड ऑफ फूड इज यूजफुल इन आयुर्वेदा फॉर दिस डिजीज।
2: ओके, देखिए हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए सबसे पहले जनरली हम मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी डिजीज है सबसे पहले आपको उसका ये ज्ञान होना चाहिए कि डिजीज कौन से ऑर्गन से है और वो ऑर्गन हमारे शरीर में कहाँ है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आप जनरली कागासन और जो प्राणायाम है, जो जिनमें भी ऐसे प्राणायाम जिसमें भी हमारे गले में घर्षण होता है, हम भ्रमरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारे गले को अफेक्ट करते हैं, दैट हेल्प्स। और रही बात खान पान की, खान पान में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप गोभी या ब्रोकली जैसी चीजें ना खाएं। धनिया जो है वो धनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर है, उसको रात को भिगाकर सुबह उसका पानी पीजिए और नहीं

0: पुल करने के लिए बहुत से आसन हैं, जैसे मंडूक आसन, भुजंगासन, मत्स्येन्द्र आसन, हल आसन, धनुरासन और भी कई सारे ट्विस्टिंग आसन हैं जिनमें हमारा पैनक्रियाज स्पेशली अफेक्ट रहे। दीज आर दी आसन्स।
1: जी हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी,
2: दत्तारथ मैडम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी रघुविंदर जी।
2: और योग गुरु को भी हमारा सादर प्रणाम।
0: नमस्कार।
2: मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है उनको कौन से आसन करने चाहिए और कौन से आसन नहीं करने चाहिए, और जो लोग बीपी से ग्रस्त हैं तो क्या उनको शीर्षासन करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
0: देखिए, जो लोग जिन्हें हर्निया है उन्हें स्पेशली कपालभाति नहीं करनी चाहिए और अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी नर्व्स अफेक्ट होती हैं, और जिनका बीपी हाई है उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए।
2: थैंक यू रघुविंदर सिंह चट्ठा की तरफ से, जय हिंद।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: हेलो
3: जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाह रहा हूँ।
0: नमस्कार
3: जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ बाराबंकी से।
0: हाँ जी
3: जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आंखों का ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें कौन सा योग करना चाहिए जिससे जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए।
0: आपका मतलब है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या करना चाहिए, राइट? देखिए, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कीजिए, बिल्कुल सांस भरना, रोकना और छोड़ना। नंबर टू, आपको गर्म पानी में पैर रखने चाहिए जिससे खून का बहाव ऊपर की तरफ जाता है और ब्लड का प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है उसी वक्त तो अपने सिर को भिगाएं या सिर पर गीला तौलिया रख लें, और खान पान का ध्यान रखें, स्पेशली खान पान में बहुत सा कच्चा आहार और लिक्विड्स लें।
3: ये जी, मैं खाना शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं खाना शुद्ध खाता हूँ।
0: ठीक
1: जी,
0: है
1: जी, पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, ये मैम बोल रही हैं। चलिए, जैतपुर धामपुर से कवि प्रेमचंद प्रेमी जी का सवाल है शालू जी।
0: हाँ जी।
1: कि स्लिप डिस्क की स्थिति में कौन सा योगासन करना चाहिए?
0: स्लिप डिस्क, देखिए स्लिप डिस्क में वही प्रॉब्लम है जैसे साइटिका में होती है कि हमें या तो कमर में दर्द रहता है नीचे के हिस्से में या हमारे पैर में जाता है, तो इसके लिए गरुड़ आसन है और हमारा गौमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है और भुजंगासन है, ये हम कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने सीधा आप लेट गए हैं और आपको दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री तक स्ट्रेट आप ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं।
1: जी, कालका जी साउथ दिल्ली से दिनेश दयाल जी का कहना है मैम कि ये सूत्र नेति,
0: हाँ जी,
1: जो नाक में,
0: हाँ जी,
1: रस्सी,
0: हाँ जी,
1: डालने वाली जो क्रिया है वो कर लेते हैं, तो इन्हें जानना चाहिए कि ये मंथली या वीकली कितनी बार करना चाहिए।
0: देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है तो आप सूत्र नीति कुछ दिन, 10 से 15 दिन रेगुलर कीजिए, ये हमारी मेमोरी के लिए, आईज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जब आपको लगता है कि आपकी नाक, दोनों नॉस्ट्रिल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुल गई हैं, तो आप इसे वीक में एक बार भी कर सकते हैं। 15 दिन में ज्यादा है, वीक में एक बार कीजिए, इट हेल्प्स।
1: सूरज यादव ने लिखा है बैंगलोर से कि हाउ कैन वी ओवरकम स्पीच स्टैमरिंग बाय योगा प्रैक्टिस।
0: स्पीच स्टैमरिंग के लिए देखिए कुछ सारी चीजें हैं, जैसे कि बलून फुलाना, आपको अपने मुंह को मुंह से प्रेशर देकर बाहर एयर डालनी है। कुछ ऐसे ही एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम सांसों को छोड़ते हैं, मुंह से बहुत प्रेशर से वो छोड़ते हैं, उससे स्टैमरिंग में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। हमारे कुछ टेस्टेड ये हैं कि जब हम कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं स्टैमरिंग वाले जिन्हें हम जब मिर्च खिलाते हैं, मतलब उनकी नॉर्मल मिर्च से ज्यादा मिर्च खिलाते हैं, तो भी स्टैमरिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है।
1: जी, तो ये जो प्रक्रिया आपने बताई मिर्च खिलाने वाली, ये प्रॉपर गाइडेंस में होनी चाहिए, घर में?
0: नहीं, घर में भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, घर में ट्राई कर सकते हैं, इट हेल्प्स।
1: ओके। हेलो।
4: हेलो।
1: हाँ जी।
4: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: नमस्ते, कौन सा बोल रहे हैं बताइए?
4: मैं पानीपत से मनवादर बोल रहा हूँ।
1: जी जी, बोलिए।
4: मैडम, मेरा जो कमर में दर्द रहता है, मतलब ये इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए वैसे?
0: कमर में दर्द कमर में है या पैरों में भी जा रहा है?
4: कमर में ही खाली दर्द होता है, उठने बैठता हूँ तो उठता हूँ तो टेढ़ा हो जाता है, और उठता हूँ तो बैठने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: ठीक है, इसके लिए आप जनरली गौमुख आसन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन से भी फायदा होगा, और थोड़ा सा कोशिश

0: कि खाने में वायुकारक चीजें बंद कर दीजिए, जैसे दूध और दही है, और अपनी मोमेंट को फ्लेक्सिबल रखिए, मतलब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना बैठे रहें।
1: जी, ये अंकित जी का मैसेज है, लिखा है कि प्लीज प्लीज मेरा मैसेज शामिल कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने मेरे ख्याल से सारे जो शारीरिक परेशानियों को डील करने वाले मैसेजेस शामिल किए हैं। इनका कहना है मैम कि डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से मुक्ति के लिए कौन सा योग करना चाहिए?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्राणायाम और आपका अनुलोम विलोम। प्राणायाम से जब आपकी सांस आपकी दोनों नाड़ियां खुलती हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो आपको बहुत ही ज्यादा अपनी मेंटली यू फील बेटर, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत लोगों को तो रिजल्ट होता है एसिडिटी का। आई एम नॉट श्योर आपके केस में क्या है, लेकिन प्राणायाम सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, आप अपने आहार को इतना अच्छा रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मैं इसीलिए बात बार बार कह रही हूं क्योंकि रोज हम पेशेंट्स को ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमें रूट कॉज को पकड़ना है, हमें फाइनल बीमारी को नहीं पकड़ना है। तो अल्टीमेटली एक तो नाक में तेल डालें, दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंद तेल डालें, नंबर 2 अपने खूब सारा पानी पिएं, नंबर 3 अनुलोम विलोम करें, नंबर 4 कोशिश कीजिए प्रकृति में रहें, पार्क में जाएं, पहाड़ों पर जाएं, प्रकृति में बैठें, अपने आप को प्रकृति से एक्सपोज करें।
1: तो शालू जी, ये बहुत जरूरी है, आज की जो तनाव से भरी जिंदगी है, डिप्रेशन और मेंटल बीमारियों का बहुत सारे लोग जो है शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारा जो यूथ तबका है, जो उनमें एग्जामिनेशंस का डर रहता है, फियर रहता है आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, नौकरी को लेकर बहुत सारी इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे में योग जो है उनका बहुत बड़ा एक मददगार साबित होता है।
0: हाँ जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है राम नाम, जो हम योग में भूल जाते हैं, वही है कि ट्राई टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं है। जब हम एक्सेप्ट करना भी सीख लेते हैं तो भी हम मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर चले जाते हैं।
1: जी, तो अभी भी बहुत से कॉल्स आ रही हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सभी के घूम फिर के वही सवाल हैं जो आप ऑलरेडी आंसर दे चुकी हैं, बीपी को लेकर है, गुर्दों को लेकर है, किडनी, एक सवाल था कि गुर्दों में किडनी में दर्द रहता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: किडनी में दर्द के लिए देखिए, वैसे किडनी का दर्द, किडनी में एज सच ऐसे दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आपको किडनी में दर्द लगता है तो आप ये कर सकते हैं कि 100 ग्राम के करीबन आप अदरक को कूट लें, उसका पानी गर्म कर लें और उसमें कपड़ा भिगोकर अपनी किडनीज पर रखें, तो इसको हम बोलते हैं जिंजर पैक। इससे किडनी में अगर कोई बीमारी भी है तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है, प्लस पानी बहुत ज्यादा पिए।
1: जी, तो जैसे कि शालू जी ने बताया कि जीव योग क्या है, योग है एक तरह से अपने आप का जीवन का संतुलन।
0: हाँ जी,
1: जीवन का संतुलन। हाँ जी, कि हम अपने आप को नियम में बांधे, सुबह उठने का नियम, शौच जाने का नियम, ब्रेकफास्ट का नियम, भोजन का नियम, और रात को सही समय पर सोने का एक नियम है, और आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर जो कुछ हमारे बस में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दें।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज,
1: सबसे बड़ी चीज। और आपने ये भी कहा कि आधा घंटा कम से कम हंस लें, खुलकर हंस लें, एक स्वाभाविक सी जो हंसी है।
0: हाँ जी,
1: तो इसी बात पर शालू जी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच। आप मैंने जैसे कहा कि बिना सांस लिए आप बोलती रही, हमारे जो लिसनर्स के सवाल थे उनके जवाब देती रही, थैंक यू सो मच। योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता हमारी एक्सपर्ट थी, और उन्हीं के साथ चलिए एक संकल्प लेते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे पर, कि और कुछ ना सही तो आधा घंटा हंस तो हम सकते ही है ना।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वांस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एस्बेस्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो दोस्तों, लम्हे पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी। अपना स्वयं का समुदाय कैसे बनाएं? कहां से शुरू करें? कम्युनिटी एक समुदाय केंद्रित इवेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके समुदाय को बढ़ाना, कार्यक्रमों का आयोजन करने और संचार को बढ़ावा देने के लिए है। सरल शब्दों में, समुदाय एक ऐसा समूह है जो विभिन्न स्थानों, अनुभवों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को एक साथ लाता है तथा वे या तो किसी विशिष्ट साझा समस्या की दिशा में काम करते हैं या किसी साझा उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। हालांकि इस परिभाषा में एक कमी है, यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि एक ही चुनौती के लिए कितने अलग अलग समूह या सभाएं होनी चाहिए। आदर्श रूप से आपको उसी चुनौती के लिए एक नया समुदाय तभी विकसित करना चाहिए जब ऐसे मौजूद समुदाय पहुंच से बाहर है। कई क्षेत्रीय समुदाय इस तरह से बनाए गए थे जो अभी भी आभासी उपकरणों के कारण संयोग देखते हैं। इस प्रकार भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सीखने का अनुभव और विकास सक्षम करते हैं। समुदाय बनाने का विचार बहुत ज्यादा काम जैसा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। यदि आप पहले से योजना बनाते हैं, अपना समय लगाते हैं, जो करते हैं उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं और कुछ बुनियादी चरण का पालन करते हैं तो आप आसानी से अपना समुदाय शुरू कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर काम करें। अपने समुदाय के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करें। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपका समुदाय किस बारे में होगा, लेकिन सही लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको संक्षेप में परिभाषित करना चाहिए कि विषय, मुख्य विषय क्या है और उन्हें एक साथ क्या लाएगा। लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आपके समुदाय से क्या अपेक्षा करनी है। समान लक्ष्यों वाले सदस्यों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अधिक सहज महसूस करें और समुदाय के साथ जुड़े। इस तरह वे शामिल होने के लिए अधिक उत्सुक होंगे, जो समुदाय के बढ़ने और टिके रहने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पशु प्रेमियों या कला प्रेमियों के लिए एक समुदाय बना सकते हैं। यदि आप एक आउटडोर व्यक्ति हैं, तो आप गतिविधियों के लिए प्राकृतिक के प्रति उत्साह लोगों को एक साथ ला सकते हैं। शोक और मनोरंजन के अलावा आप व्यवसायों के बारे में कुछ बना सकते हैं ताकि लोग विशिष्ट विषय पर खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि गतिविधियां और विषय समुदाय की पहचान से मेल खाते हैं।

उन मुख्य गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें आप समुदाय के साथ आयोजित करना चाहते हैं। समुदाय नेटवर्किंग और आत्म सुधार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस मामले में गतिविधियों का आयोजन और आयोजन करना समुदाय प्रबंधन के सबसे बुनियादी हिस्से हैं। जब आप योजना बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समुदाय के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त है। क्या यह एक बड़ा सम्मेलन है या एक छोटा मीटअप, क्या ये साप्ताहिक सभाएं हैं या मासिक कार्यक्रम, क्या आपको उन्हें ऑनलाइन होस्ट करना चाहिए या भौतिक कार्यक्रम आपकी भीड़ के लिए बेहतर है। आपके समुदाय की जरूरतों को जानें और उसके अनुसार कार्य करें ताकि आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और उन्हें समुदाय का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी प्लेटफॉर्म चुनें जिसमें आपकी नियोजित गतिविधियों के लिए सभी उपकरण मौजूद है ताकि आपको बाहरी सेवाओं की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। जब समुदाय प्रबंधन की बात आती है तो आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म गेम चेंजर होता है। आपके पास सभी आवश्यक उपकरण होने से आपका समय बचेगा, आप हमेशा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आपकी संगठन प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। आपके समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से कुछ घोषणा उपकरण और संचार चैनल है। यदि आप सदस्यों के साथ स्थिर और सुचार संचार बनाए नहीं रख सकते हैं तो आप अपने समुदाय की अखंडता को बनाए नहीं रख सकते हैं। सारांश और सामुदायिक समाचार के लिए ईमेल, आपके सदस्यों के बीच आंतरिक व्यक्तिगत संचार के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं तथा लोगों को बातचीत में शामिल करने के लिए आप जूम कॉल्स भी ले सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर फिजिकली मिलना आपके लिए अगर इतना आसान नहीं होता है तो। अगर लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो वो किसी चीजों में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। अपने सदस्यों को हमेशा अपडेट रखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें खबरों के बारे में बताएं। लोगों को एकत्रित करके परस्पर संवाद को प्रोत्साहित करें। एक सक्रिय समुदाय ही लोगों को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि पहले बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को लगे कि वे भीड़ का हिस्सा है तो अपने समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित करना आपकी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोग एक साथ महत्वपूर्ण समय बिताते हैं तो वो आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लोगों को एक साथ लाना एक सामुदायिक नेता के रूप में आपके मुख्य लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। अगर आपका सामुदायिक प्लेटफॉर्म आपको इवेंट शेड्यूल, RSVP, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अपडेट और रिमाइंडर, चित्र अपलोड और बहुत कुछ जैसे सही संगठनात्मक उपकरण प्रदान कर सकता है तो भौतिक या वर्चुअल इवेंट आयोजित करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तुलना देखें दोस्तों जो भी हो, इफ यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आराम से कीजिए। इस बारे में तनाव न ले कि ये कैसा होगा। समुदाय बनाना जरूरी नहीं है कि गंभीर और जटिल हो। ये नए लोगों से मिलने और अच्छा समय बिताने के लिए एक आकस्मिक मंच हो सकता है। आपको बहुत अधिक सोचने या योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय ले, प्रेरणा के लिए अन्य समुदायों को ब्राउज करें और प्रवाह के साथ चले। गो विद द ट्रेंड। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा

सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla. दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं एक बार फिर साइमा को और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम अल्फा जैन। और आज है क्विज टाइम, रेनबो क्विज। और क्या कुछ है क्विज में खास, फिलहाल हमारे दोस्त जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि भाई किस तरह से आज हम इस प्रोग्राम में धमाल मचाने वाले हैं, सवालों के जवाब देने वाले हैं और क्या कुछ खास करने वाले हैं। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हो चुका है आकाशवाणी रेनबो पर और खूबसूरत गानों का सफर लगातार बना रहेगा दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना रेनबो जीनियस अल्फा जैन और आपके जो कहते हैं ना कि जब हम बातें करते हैं एक साथ मिलकर के और सवाल और जवाब जब होते हैं और उनसे जब बहुत सारी बातें निकल के आती हैं तो सीरियसली बहुत मजा आता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। रेनबो जीनियस आज आप बन सकते हैं, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है इस प्रोग्राम में खास। फिलहाल आज है फादर्स डे और आज है इंटरनेशनल योगा डे और आज के दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि सब चाहते हैं भाई सेहत से जुड़ी बातें हो, कुछ खास हो और क्या खास हो सकता है। बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक। और कहते हैं ना जो साउंड ट्रैक्स हैं प्यारे प्यारे वो लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बने रहते हैं, आपका साथ निभाते रहते हैं और इसी तरह मजे हम करते रहते हैं साथ में मिलके। फिलहाल बातें होती रहेंगी, एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।

रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना रेनबो जीनियस और अल्फा जैन चल रहा है इस वक्त में और इसके साथ साथ रेनबो जीनियस बनने के लिए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है और कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगता है शायद लाइन ड्रॉप हो गई और फिर जुड़ेंगे फिर बात करेंगे देखते हैं कौन है हमारे साथ में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर चलता रहेगा और लगातार कहते हैं ना कि जब बातों का सिलसिला बनता है आपके साथ मिलते हैं बैठते हैं बात करते हैं और जब कहते हैं ना कि जब साथ में मिल बैठ के बातें होती हैं सवाल जवाब होते हैं और खासकर जब वक्त बीतता है साथ में तो सच में मजा दुगना हो जाता है। फिलहाल इसी तरह लगातार बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस अल्फा जैम, मैं हूं सायमा आपके साथ और देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। हेलो हेलो
1: हेलो
0: आप कौन?
1: हेलो,
0: आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हाँ जी,
0: आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनस है।
0: अच्छा, आपने हमें कॉल किया है अपने सवाल के जवाब देने के लिए, तो मतलब मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, तो मैं आपसे सवाल बिना देरी करे पूछना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए, हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है?
1: नेशनल फ्रूट तो आम होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आम होता है। अच्छा, हमारा अगर हम बात करें राष्ट्रगान किसने लिखा है?
1: राष्ट्रगान?
0: जी
1: राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जी बिल्कुल सही, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मेरा तीसरा सवाल, मछली किसकी मदद से सांस लेती है?
1: मछली किस चीज की मदद से सांस लेती है?
0: जी
1: मुझे हिंदी में तो नहीं पता, बट इंग्लिश में गिल्स कहते हैं शायद।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, मछली गल फड़ों की वजह से सांस लेती है और इसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। अच्छा, आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरा चौथा सवाल।
1: क्या, किस चीज को?
0: आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
1: आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंवले को इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं।
0: देखिए आप ना सीरियसली, चलिए कोई बात नहीं, रेनबो जीनियस बनते बनते आप रह गए, बट मैं आपसे पूरे 5 सवाल जरूर पूछूंगी, आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं। अच्छा आज जी, आज 21 जून है और कौन सा दिवस आज मनाया जा रहा है?
1: 21 जून है और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वैसे आज फादर्स डे है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: ये तो मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और है तो मेरी नॉलेज में नहीं है।
0: आज है इंटरनेशनल योगा डे।
1: इंटरनेशनल लेबर डे, ओके।
0: थैंक यू सो मच अनस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों के हमें जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: ओके थैंक यू,
0: बाय, टेक केयर, बाय।
1: ओके बाय।
0: इसी तरह आपसे बातें होती रहेंगी लगातार, कहते हैं ना कि बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा और खूबसूरत गानों का सफर भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
9: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
8: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
9: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
8: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: हे, तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
9: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
8: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
9: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
8: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: ब्रेक के बाद साइमा फिर है आपके साथ और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रेनबो जीनियस। और क्या कुछ है खास, फिलहाल प्यारे प्यारे साउंड ट्रैक्स भी हैं हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन रेड मोर जीनियस और मैं हुसैन आपके साथ। और देखते हैं अभी फोन पर कौन है हमारे साथ, कौन जुड़े हैं हमसे और कौन हमसे बात करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक फोन लाइन शायद ड्रॉप हो गई और इसी तरह बातें होती रहेंगी, कोशिश होती रहेगी कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौन हमारे साथ बात कर रहे हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, जब एक साथ मिलके बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी मौज मस्ती की जाती है, तो फिर कहने ही क्या। और यहाँ पे वक्त की कमी भी है और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, रेनबो को इस चल रहा है और देखते हैं अभी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज कहते हैं ना कि कभी ना कभी कुछ तो ऐसा जरूर हो जाता है जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी के सबब में डाल जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, कभी कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है। जो हो जैसा हो बी पॉजिटिव। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, अब वक्त की कमी भी है हमारे पास, लेकिन कोशिश लगातार करते रहेंगे कि हम किसी के साथ जुड़ पाएं, किसी से बात कर पाएं और खूबसूरत गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस और देखते हैं कौन है आखिरी मेहमान हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: आप कौन?
1: अभिषेक।
0: हाय अभिषेक, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। अच्छा अभिषेक, आप हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है?
1: नेशनल एनिमल टाइगर।
0: वेरी गुड। हमारा नेशनल गेम कौन सा है?
1: नेशनल गेम हॉकी।
0: जी। हमारी कहा जाए जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी लैंग्वेज में www डॉट का मतलब क्या होता है?
1: ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास।
0: चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। जी कोई बात नहीं, आपने तीन जो सवाल हैं उनके जवाब तो दिए हैं और दो सवाल और पूछ लेती हूँ। हमारे जो अशोक चक्र है, हमारे फ्लैग में जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? उसमें 24 जो तीलियां होती हैं, 24 तीलियां हमारे अशोक चक्र में होती हैं। फिलहाल एक लास्ट और सवाल कि हमारी देश की राजधानी का नाम क्या है?
1: राजधानी का नाम है न्यू दिल्ली।
0: जी बिल्कुल ठीक। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक।
1: थैंक यू,
0: बाय
1: बाय बाय बाय।
0: कहते हैं ना कि जाते जाते जो मौका लगे उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी कोशिश यही थी कि हम जितने लोगों से बात कर सकें और किसी तरीके से मुलाकात भी कर सकें तो हो जाए। फिलहाल बातों का सिलसिला लगातार चलता रहता है और प्रोग्राम्स का सिलसिला भी लगातार चलता रहता है, लेकिन वक्त कहीं ना कहीं थमता जरूर है हर चीज के लिए। और मेरा जो प्रोग्राम है ना उसका भी कहते हैं ना वक्त धीरे धीरे धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है और कह रहा है कि साइमा अब आपको जाना भी है। वादा करते जाइए इस वादे के साथ कि अगली बार फिर आएंगे एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज में लेकर के। और इसी तरह बने रहिए आप आकाशवाणी रेनबो के साथ। बातें, मुलाकातें, सिलसिला और गुफ्तगू जब कहते हैं ना कि साथ में बैठ के की जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और वक्त का पता नहीं चलता तो सच में लगता है कि हम अपनों के साथ हैं। हम बहुत कहते हैं ना कि अपनापन जो महसूस होता है और खासकर यहाँ आकर जब आप लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और आप हर प्रोग्राम का ऐसे ही शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि देखिए अब अगला प्रोग्राम जो है उसका भी तो आप इंतजार करें ना, सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में आपकी अपनी सिटी के बारे में क्या कुछ है खास वो आपको पता चलेगा ठीक 5 बजे। फिलहाल अब साइमा को दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Talks between the U.S. and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Birkenstock today. U.S. Vice President J.D. Vance is leading the U.S. delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the U.S. military said the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are said to participate in the quadrilateral talks late in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the U.S. delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, held a meeting with Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sansodak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted amid tight security arrangements today. It was held across 551 cities in India and 14 cities abroad for more than 22.79 lakh candidates. The examination was conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in English and 12 Indian languages. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The National Disaster Response Force, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a three-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. The International Day of Yoga has been observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness.
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी
3: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो सर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है। और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम 100 बिलियन डॉलर का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
1: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जीडीपी ग्रोथ. वुड यू से दैट द गवर्नमेंट्स फोकस हैज ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम अ कंप्लायंस हैवी सिस्टम टू अ फैसिलिटेशन ड्रिवन इकोसिस्टम. हाउ डू यू सी दिस बेसिक माइंडसेट चेंज और यू कैन से पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच?
3: If you look at the whole ecosystem, right? Earlier, business was always viewed with suspicion.
1: Yes.
3: You were always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
3: A very significant change has happened in this last 12 years that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
3: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it.
1: Mm-hmm.
3: This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you will see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
1: Yes.
3: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
1: Yes.
3: And as you talk about new businesses, MSMEs to grow, they've allowed that by a simple change in the definition of the MSME thing. So now MSME has got lost the fear of growing going forward.
1: Okay, so that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years?
3: Absolutely, and if you see, this is still work in progress. You see, we've revised three legal laws in the criminal space, you know, the Evidence Act, the Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
1: yes.
3: Right? They've been
1: yes.
3: scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you know, you started this conversation by saying, what are the two most important things that you've said? The first two most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC. The insolvency code, because
1: yes.
3: earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renegotiating kind of things. The second
1: yes.
3: one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST,
1: yes.
3: which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
1: Yes.
3: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
1: And it became a two-slab structure, much simpler.
3: No, nearing two slabs, not yet two slabs. S.P. Sharma will differ from that. But if you look at this, there have been growth rates. You know, people thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for last year and the projections for this year. And you see the current PMI index, it is showing growth going forward.
1: Yes.
3: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something, all this people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
1: So Dr. Sharma, you know, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening?
2: Yes, Sonuji, digital processes are very, very important for these of doing business, as now we are the largest digital economy actually. We are at the top in the world economic system, and our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these of doing business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down, compliances are coming down. As Mr. Shanai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years. So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
2: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship. They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
2: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur, to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years, with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like, the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space, to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
2: Like, the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
2: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
2: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
2: With a great confidence that yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shanai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
2: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: system. Absolutely. सो मिस्टर चिनॉय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम, और आपने भी कहा कि इतनी हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया।
3: सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं। तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत कम सा हो गया है। अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था
1: जी।
3: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव-गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चली नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
3: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
3: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्गत एक स्कीम था जो कोविड में में गवर्नमेंट इंडस्ट्री एनजीओस और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास प्रांत के रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
1: जी,
3: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट पे इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
3: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी। तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो। तो एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारा आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
2: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय विच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो पीएम गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट। हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज फॉर क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, बोथ फॉर डोमेस्टिक and for the foreign investors?
3: So Sunil ji, you have talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. You know, we import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. But the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
3: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
3: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Mm. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business.
1: Mm.
3: And particularly the first is you have computerized the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes where you don't have to be physically present and you can do this online. And interestingly, and this is very interesting for your listeners to actually understand, if you don't clear your goods or you don't pay on time, there's a penalty on you. So you're actually putting the onus on the businessman to help in this going forward. So, you know, that is the customs thing. And there's been a lot of streamlining of the customs thing and more is in store going forward. There were multiple chapter heads. There were multiple things here. There's a rationalizing going in. And a lot of what has been done in income tax space will be done in the customs space. The second thing was logistics. You know, if you took the textile industry for one, and it's a 4 or 5 season kind of a thing, and you had to ship between India and let's say your main market, if it was the US, within certain number of days. Now, if more than 50% of those days were taken up in logistics, then you faced a disadvantage. And with the PM Gati Shakti and everything happening here, they looked at a very simple thing. Where are the manufacturing clusters? Where are the export destinations? And where is the logistic required? Mm-hmm. And started addressing them in a very systematic way.
1: Yes.
3: And then they put it online. They made it digital so you could actually follow. Private sector also has played a way. You know, we tend to think that maybe companies who do delivery, right, are possibly using gig workers, etc. But they've contributed to this because they can track shipments. Private guys, you know, even now the India Post, if it sends you anything, you can track it going forward and you know when it is going. So the whole, and I like Mr. Sharma mentioned that 14%, it has come down to single digits now and you'll see further going forward. So that is the PM Gati Shakti, you know, impact here. And the digitization

0: ভজন শুনিলে। মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला

0: में पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल,

0: विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।